0: कथा टॉप स्टोरी
1: कटर नियोजित है निराने था अमेरिका व सह ईरान अतर साक्षात इधरे टकने आम सदा कटर राज्य नियोजित इन पर सख ईराने टप मिनटी बनवा ईरान माध्य वार्ता के लिए एम कंडा में प्रधानिया कटर अग्रमाते बिरागे उपदेशक वर्यों को बवाई राजतांत्रिक क्रियावली तत्व समालोचने की सदा कटर नियोजित खंडायम ईरान नीलधारी हम वूभव ईरान प्रवृत्ति एजेंसिया वार्ता कला अमेरिका व सह ईरान अतर साक्षा इधरेटकिन आम सदा पाकिस्तान सह तुर्की विदेश मातिवरुंद साक्षावल निरतवीति बनवा ईरान विदेश माति अब्बास अराक्ची इराट राज्य रूपवाहिनी समग समुख साक्षावकटे क्विमिन प्रकाश कले अमेरिका व समुख गिविसुम कत्सन किरीम अवसन नदीरे पवतिन बवाई युद्ध अवसान किरीम सदावन गिविसुम टात्सन थबी मादसितुवन पव अमेरिकानु जनाधिपति डोनाल्ड ट्रंप ते प्रकाश कला अमेरिकानु जनाधिपति वरया सदहन कले ईराने सह अमेरिका वतर युद्ध अवसान किरीम गिविसुमेन अनतुरुव होमु समुद्र संधिय समट व्योर्तवन पवई मेम गिविसुमेन अनतुरुव ईराने अतुलुव समस्त गल्फ कलापे समग सुहदव कटयुतु किरीमट बलापोरत्तुवन पवद ट्रंप सदहन कला එහෙත් ඇමරිකාව අත්සන් තැබීමට නියමිත සාම ගිවිසුමට ඉරාන ජනතාව විරෝධය පළ කර තිබෙනවා. එම ගිවිසුම ඉරානයට අපහාස සහගත බවයි විරෝධතාවල නිරත වන ජනතාව සඳහන් කළේ. ගිවිසුමකින් හොමු සමුද්‍ර සන්ධිය පිළිබඳ ඉරානයට ඇති බලය අහිමි වනු ඇතැයිද විරෝධතාකරුවන් ප්‍රකාශ කළා.
0: අනුග්‍රහය සැමට අත දුන් ගමනට ජවය දුන් රටට පණ දුන් 30 වසරක විශිෂ්ටත්වයේ අභිමානය People's Leasing විශ්ව